0: Sua 99.9.
1: ए सी जगमोहन कौर ते केदीप कुछ मजबूरियां दियां गल्लां बातां कर गए। ये वो टाइम जदों मजबूरियां आ जांदियां ते उस टाइम चो लंघना सौखा भी किसे वास्ते औखा भी। कमेडी दियां गल्लां बातां सुनदे आ साडे कमेडी किंग जसविंदर भल्लो भल्ला आत्रो जतिंदर कौर हरभजन जब्बल इन्हां द्वारा तैयार की हुई स्किट सुनते हैं जिते हरभजन जब्बल होवे जतिंदर कौर होवे ते ये दो नाल कलाकार साढ़े जुड़ जाण भल्ला जी ते आत्रो तो कमेडी तो वाकया ही वधिया होएगी। देखते हैं आपां इस चों की लभदे हैं इस कमेडी दे विचों।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूरती रहती हो मुझे, तुम्हें तो जादू डाला है मुझ पे।

0: Swa 99.9.
1: ये सी दिव्य दी कलम और मीं दा मौसम सौण भादों दे सिराटे मीं दे विच मंजे भी बाहर भेजन दे ते मंजियां नूं फिर कान पै जांदी ओ मौसम भी अपना ही एक नज़ारा पेश करके जांदा जदों नठ के मीं आउंदा जदों सिराटे आउंदे आ अगे कुछ हासरात दीआं गल्लां सुणदे आ तलोक सिंह चुग भी महफलां च बैठ के कुछ गल्लां कर गया कुछ हॉलीडे दीआं गल्लां तलोक सिंह चुग तो सुणदे आ हासरात दे सैगमेंट च
2: साढ़े पंजाबियां विच ना दो गल्लां कहण दा बहुत सुभाव आता ने पहली तो गल ए है कि भार किवें घटाइए हाय रब्बा भार किवें घटाइए ते दूजी आवाज ए आई है कि हाय हुण की पकाइए तालियां बजा सकदे हां खुल के जीवन जीना सानू ए जीवन खुशियां वास्ते आसियां वास्ते मिलिया ऐस मौसम विच ना खान पीन दा थोड़ा जिहा परहेज नहीं कर सकदे पर ओ एक सहेली दूजी नूं दस रही सी जी मैं तां बड़ी डाइट कर रही हां अजकल डाइट ते हां ओ कहिंदी की खानी है कहिंदी बस गाजर या मूली ओ कहन लगी वे गाजर या मूली खानी है पर भार तेरा वधी जांदा ओ कहिंदी ए गाजर दा हलवा ते मूली दे परौंठे औरतां नूं ज्यादा फिकर हुंदा है भार वधन दा उन्हां ने ना वेइंग मशीन रखी हुंदी है एक औरत रोज अपना वजन चेक करदी सी और हमेशा ओना 68 हुंदा सी बड़ी खुश हुंदी सी एक दिन उन्हें ऐनक ला के वेख लिया वो हैगा सी 88 तो कहन लगी हाय रब्बा मेरी ऐनक दा पार 20 किलो है पत्नी कहंदी पति नूं ऐ जो मैं पाया होया ना मैं 7 साल तो यही पाया उंज दा उंज ही फिटिंग है एदी तुसी मैनू एवें कहंदे रहंदे हो मोटी है ओ कहंदा भगवान ने रब तो डर ए शाल है पर ए मेरे सारे चुटकलियां वल जरा गौर फरमान दी लोड़ नहीं रज के खाओ ए मौसम है खान दा दिसंबर विच दबा के खाओ फिर आपां जनवरी च देखांगे इस तरह होया जी एक मुकदमा चल गया सी ते उत्थे ताई दी गवाही सी ताई जदों गवाही देन लगी ता उत्थे दो वकील ते ओ एक जज ओ तिन्ने ही ओदे ही पिंड दे सन ते वकील ने ताई नू पुछया ताई तू मैनू जानदी है ताई कहंदी हां गुलाब सिंह दा पुत्तर है तू एक नंबर दा झूठा है तू ते तेरी पत्नी भी तेनू छड्ड के गई हुई है ओ बड़ा हैरान होया शर्मिंदा जिहा भी होया ते ओ कहिंदा ओ दूजे वकील नूं जानदी है कहिंदी हां बड़ी चंगी तरह जानदी हां ओ करनैल काणे दा पुत्तर है एक नंबर दा बदमाश है तेरे घर भी ओही तलक हैगे सी ओहदे ओ जज ने जदों सुनिया ना ते जज ने मीटिंग मुकदमा बर्खास्त करता थोड़ी देर वास्ते ते दोवां वकीलां नूं ना चैंबर च लै के गया कहिंदा खबरदार जे ताई नूं मेरे बारे कुछ पुछिया ए जोशियां दियां बड़ियां खबरां मिलदियां रहिंदियां ने ते अक्सर अपनियां जिहड़ियां औरतां ही ने ना ओही अगे हत्थ कर दिंदियां लै भी देखी की हैगा ते ओ कहन लग्या जोशी के तेरे ते ना बड़ा औखा समां चल रिहा ते ओ कहन लगी फिर की होएगा इस तो बाद कहिंदा फिर तू यूज्ड टू हो जाएंगी ए एक नूं कहिंदा कि तेरी कुंडली च ना बड़ा तन है जोशी कहिंदा एक औरत नूं तेरी कुंडली च बड़ा तन है ओ कहिंदी ओ तां गल ठीक है पर ए दसो भी ओ मैं अकाउंट च किवें ट्रांसफर करूं ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਤੇ ਨਨਾਣ ਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗੀ ਰੋਹ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ
1: ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਨਨਾਣ ਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਮਲ ਹੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਮਲ ਹੀਰ ਇਸ ਗੀਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਗਿਆ ਗਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਮਲ ਹੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ